0: है
1: ओह
2: 92.3 FMR फेवरेट म्यूजिक रेडियो का वाइब्स
3: अंग लोपेट
2: ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR
3: ang lupet.